आशिकों का मीना और जाम है। अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है, आशिकों का मीना और जाम है। अल्लाह जल जलालू। لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

यूनुस को रखा किसने, पहले आग में डाला फिर आग को फूल किया किसने, उसके नाम की गुन गाते हैं इब्राहीम खलीलुल्लाह।

इलाही दिखा दे बहारे मदीना के दिल है बहुत बे करारे मदीना ये दिल हो और अनवार की बारिशें हों

कभी लुत्फ मक्का का हासिल करूँ मैं, कभी जाके लूटूं बहारे मदीना। कभी लुत्फ मक्का का हासिल

तेरे गुलिस्तान में सब गुल हैं, बस एक अगर हूँ तो खार में हूँ। मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो, बहुत ही गफलत शियार में हूँ। ओ माय बिलव्ड अल्लाह, गिव मी ऑल्सो सम कंसर्न ऑफ द आखिरत। आई एम वेरी वेरी नेग्लिजेंट, indifferent, heedless. Quranic verses upon verses I listen. Ahadith of Nabi alayhi salatu wa salam. Tafsirs, commentaries of the Ahadith. But it seems to have no effect and impact on my heart, O my beloved Allah. So give me some concern of the Akhirat, that this world is transitory, temporary. We have to cross and go into the Akhirat. That bridge of death has to be crossed whether we like it or not. There will be a day of judgment where we will have to account for all our deeds and our actions. Mujhe bhi kuch fikr aakhirat ho, bahut hi ghaflat shiar mein hoon. Raha main bekaar zindagi bhar, bas ab to mashghool kaar mein hoon. रहा मैं बेकार जिंदगी भर, बस अब तो मशगूल कार में हूँ।

जिसमें तेरी ही याद हो ऐसी हर आन दे, जिसमें तेरी ही याद हो ऐसी हर आन दे यार।

मुझसा कोई बदकार न होगा, कौन सी मैंने की न बुराई। मुझसा कोई बदकार न होगा, कौन सी मैंने की न बुराई।

भूल सकूं ता उम्र न तुझको चाहूं भुलाना खुद भी अगर मैं भूल सकूं ता उम्र न तुझको चाहूं भुलाना खुद भी अगर मैं